0: इनकम कम है, लोग हमें फोन करते हैं शर्मा के कहते हैं सर हमारी इनकम 15,000 है। मैं कहता हूँ बढ़िया बात है, ज्यादा होती तो आपको फायदा ही ना होता। तो अगर आपकी इनकम कम है, आपको गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करती है, और आप लाइक अगर फैमिली ऑफ फाइव है, आपको 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 उसमें से ग्रांट है। अगर फैमिली ऑफ टू है तो 45,000 की फंडिंग आती है, उसमें से हाफ पोर्शन 25,000 तो ग्रांट है। तो मतलब आप हमें लाइक देयर इज नो कैच इन इट, आप हमारे ऑफिस आए, थोड़े से ही दिन रह गए हैं, कोई एज लिमिट नहीं है जी इसमें। आप 50 के हैं, पेंशन पे हैं, 75 के हैं, आप आराम से बेसिक इंग्लिश आपको आती है, अटेंडेंस लगाएं, 2-3 घंटे क्लासेस लगाएं, स्किल हासिल करें, आसान से कोर्सेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, कॉल करें ऑफिस आए।
1: 4372643175 थोड़ी फीस एक बार दस दो, सारे कोर्सेज की ऑनलाइन ने,
0: ज्यादातर कोर्सेज फुली ऑनलाइन है, क्लाइंट्स को चाहिए आसान कोर्सेज, क्योंकि वो एक लाइक मिडिल एज में हमारे ज्यादा क्लाइंट्स हैं, उनके वो वैसे ही फैमिली की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इतना ही हाउसवाइफ ऊबर ड्राइवर लाइक हम लाइक 8 साल से धंधे में बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, हम शुरू नहीं कर रहे काम, बहुत टाइम हो गया हमें, और इसमें लाइक फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, आसान कोर्सेज है, ऑनलाइन है, और लाइक असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, और आप क्या लेंगे, आप स्किल भी सीख रहे हैं, अकाउंटिंग सीखे, मैनेजमेंट सीखे। ऑन अदर हैंड हमारे पास HVAC जैसे हार्ड कोर्सेज भी है, PSW, अर्ली चाइल्ड असिस्टेंट, उसमें आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, पहली क्लियर बात है। तो आप ऑफिस आए, गवर्नमेंट आज फीस पे कर रही है आपकी, आप पढ़ रहे हैं, फीस गवर्नमेंट पे कर रही है, ऊपर से गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग आपके खाते में दे रही है 30 से 100,000 डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। मैरिड है फायदा है, मैरिड विद किड्स है और फायदा है, सिंगल है तो फायदा नहीं है, कॉल ना करें।
1: वेरी गुड नंबर,
0: नंबर जी 437-264-3175, 437-264-3175, तुम हुने भी कॉल करके एस्टीमेट चक सकते हो जी, ऑफिस साडा कल भी खुल जाएगा, 437-264-3175, 437-264-3175, फीस हमारी 199 या 499, शुरू में नहीं, जब फंडिंग आपके अकाउंट में आती है तब आपने अपनी ईमानदारी से देनी है। 437-264-3175
1: 437-264-3175 बहुत शुक्रिया सुनाज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रोग्राम पे जब रहा तो नंबर है अपना 905-673-3337 अपना फोन नंबर है। 40 दिन फिल्म लग चुकी है भाई, अज भी हुण 9 बजे शो है सिल्वर सिटी ब्रैम्पटन, बाकी हरेक थिएटर दे विच लगी हुई है। देबी मखसूसपुरी लीड रोल, गुरप्रीत घुग्गी, घुग्गी साहब का बेटा, बहुत सोहनी फिल्म। 40 दिन अपने नेड़ले सिनेमा घर जाओ देखो 40 दिन। रूफ नवी लवानी है, रूफ की रिपेयर करवानी है, पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाजी, बहुत सारा एक्सपीरियंस, फुली इंश्योर्ड कंपनी, पैशन रूफिंग 647-919-94-7919-9419-9413 पैशन रूफिंग। सुख भाजी भी साढ़े नाल ने एक बार फिर ग्रैंड होम फर्नीचर जी भाजी,
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवी भाई जी, बिल्कुल परिवारां नूं सद्दा पत्र दे रहे हैं जी, सैचरडे संडे जिहड़ी कैनेडा डे सेल लगी हुई है, परिवारां ने किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी है, सैचरडे संडे तुसीं इह 2 दिन हुण मिस नहीं करने, क्योंकि साल दीआं सब तो लोएस्ट प्राइस मिल रही है फर्नीचर के उपर। तुसीं अपने मास्टर बैडरूम नूं अपग्रेड करना चाहते हो, डाइनिंग टेबल लेना चाहते हो, हार्ड फोम के मैटर चाहिए ने, रियल मार्बल के डाइनिंग टेबल चाहिए ने, तो साल दीआं सब तो घट कीमतां जिहड़ियां फर्नीचर के उपर मिल रही है, तो नाल वड्डे वड्डे अपलायंसिस जिहड़े तुसीं फ्री अपने घर लैके जा सकते, सिर्फ 6685 Tomcon Road, डेरी टॉमकन की मेन इंटरसेक्शन हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर 6685 Tomcon Road 6685 Tomcon Road के उपर लग चुकी है साल की सब तो वड्डी फर्नीचर की कैनेडा डे सेल नवी भाजी।

तस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता ग्रे बीजं सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं की

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और समर का जो मौसम है वो आपके लिए चल रहा है और थोड़ी थोड़ी बरसात, थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मी, बहुत ही प्यारा सा मौसम है। और अब आपके लिए बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। और पिछले हफ्ते आप सभी ने फादर्स डे मनाया, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी बढ़िया लेके आना चाहते हो, आउटडोर, अभी समर है तो आपको बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट किचन गैजेट्स चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए सेंट्रल मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए, समर स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-7099-0045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
1: मक्खी बेसन पिस्ता बरसी।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੋਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने घर खरीदना बेचना है तो आप किचन और वाटरलूप वाल्व में नसीब खंड को कॉल कीजिए 519-546-1265-19 546-1260। घर खरीदने के बाद एकदम आपको ख्याल आता है मूविंग का, तो मूविंग के लिए एचके मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-804 416-524-6704 मूविंग के लिए सबसे बढ़िया आपकी सेवाएं मिलती हैं कम्युनिटी में। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। तो आइए आजकल मौसम के ही मुतल्लक गाने सुनाए जाए तो क्या ख्याल है कि मौसम इतना खूबसूरत है, तो उसी के मुतल्लिक आपको सुनाते हैं। लता जी का गाया हुआ मीना कुमारी के ऊपर फिल्म आया गया था ये गीत पकीता में, तो वही गीत आपको सुनाते हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ। पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाया है तो अब आपके लिए मास्टर विजन डिपू लंदन में मौजूद है घोर रोड पे। तो आप मास्टर कोलिजन डिपू पर जानकारी ले लीजिए, और किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपू का नाम याद रखिएगा। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है, तो आप उनके बढ़िया बढ़िया सामान लेने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-709-0045-799-0045। न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट ब्रू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर आप लाइव कुकिंग करवाने के लिए उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको गीत सुनाते हैं, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, राज फिल्म आई थी 1967 में, राजेश खन्ना की।

0: गाना थोड़ा सा सैड है, लेकिन थोड़ा मौसम के लिए, जैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो कई बार ऐसा महसूस हो जाता है आपको, इट्स ए गुड फीलिंग समटाइम्स। तो आइए, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ। तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो आजकल बहुत सारी जो न्यूज है बहुत किस्म की आ रही है बाहर से, जब तक हमारा प्रोग्राम आता है वो जो न्यूज होती है वो सारे आप तक पहुंच जाती है। तो फिर आपके लिए ये जो न्यूज है तो फिर थोड़ी हम रिपीट वही न्यूज आपको दोहराते नहीं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको सुनानी चाहिए। जैसे कि जिस दिन भगवान देने पर आते हैं उस दिन किस्मत नहीं देखते, और जिस दिन बचाने पर आते हैं उस दिन हालात नहीं देखते। आज जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। बस आप मेहनत करते रहो क्योंकि समय सबका आता है, याद रखिएगा। घड़ी को कोई नहीं चढ़ाता फिर भी वह चलती रहती है, इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों रुकिए मत। तो दिल को अपने कायम रखिए, अपने आप को कायम रखिए, बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, तो आप जरूर। एक लड़का है इंडिया में 14 साल की उम्र में, वो उसने 141वीं मंजिल पर ऑफिस अपना बनाया है। यह जैनम जैन 14 साल के हैं, भारतीय मूल के हैं। तो मैंगो इंजन AI टूल्स बनाते हैं जो बिजनेस की मार्केटिंग, ग्राहकों तक पहुंच और ग्रोथ में मदद करते हैं। तो वह 6 साल की उम्र में बिजनेस मीटिंग्स में जाना शुरू किया, 13 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कई पेटेंट, TEDx स्पीकर और इंटरनेशनल अवार्ड में के विजेता हैं। तो यह है मैंगो इंजन AI स्टार्टअप। तो मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा एग्जांपल हो, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरा कहने का है कि अगर हमें जिंदगी में सीखना है तो कहीं से भी आप अपने छोटों से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप बस आसपास देखते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। अब आपके लिए एक और गाना मैंने चुना है, बहुत ही बढ़िया सा गीत है, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिपो लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। तो मास्टर कलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, अपने घर में बढ़िया TV लेके आना है, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको लेटेस्ट मॉडल्स मिलेंगे और स्पेशल प्राइस पे मिलेंगे। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। तो ये नंबर है आपके लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और गीत बहुत ही रोमांटिक सा आपको सुनाते हैं। तो ये फिल्म गीत आई थी 1970 में,
1: रणजिंदर
0: कुमार,
1: दिल लुभाते रहे,
0: हसरत जयपुरी के लिरिक्स है,
1: ये म्यूजिक के लिए
0: नहीं
1: वही तो नहीं

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गाथा संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो रात को भी आपकी सेवा में जरूर ही हाजिर हो जाएंगे। तो इस हफ्ते आपने निर्जला एकादशी भी मनाई। आपको याद होगा कि निर्जला एकादशी के दिन इतने सारे घड़े लोग एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं और पानी भर भर के गिफ्ट में देते हैं। जगह जगह लोग शबीले लगाते हैं तो ठंडा पानी पिलाते हैं। तो वो जो दिन है आपको याद होगी, जब निर्जला का यही दिन होता था, निर्जला का अच्छी वाला दिन, जिसमें ये किया जाता था कि लोगों को पानी पिलाया जाता था, शबीले लगती थी और भी बहुत सारे। गर्मियों में जितने गुरुओं के दिन आते थे उसमें भी हर जगह पे शबीले लगती थी और बड़ा बहुत ही बढ़िया सा वातावरण उसमें क्रिएट होता था। अगर आपको मूव होना है तो इसके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप की उनकी बहुत सारी टीम्स होती हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और आपको अगर मूविंग के लिए बुकिंग करनी है तो 416-524-704 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704H।

0: जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सारे कामकार।
0: अगर आपको किसी किस्म का भी आपने प्रेस्टो वॉशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान मिलता है। अब आज बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो आपको क्या है कि गाड़ी ध्यान से चलाना, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो कोशिश करिए मेन रोड से जाइए, बीच वाली सड़कों से ना जाइए। आपके लिए भी सुरक्षा और बच्चों के लिए भी सुरक्षा, ताकि आपका लाइसेंस महफूज रहे। सो इसलिए तो अब आपको सुनाते हैं पंजाबी का गाना। तेरी कनक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं होवेंदी। तो हमारे प्रोग्राम का समय भी समाप्ति की तरफ है। तो दो लच्छियां फिल्म आई थी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की, तो उसी का ये बहुत प्रचलित गाना है। ये जो गाने हैं भूले बिसरे गीत कभी कभी सुनने को मिलते हैं। तो आपको अब आपसे विदा लेती हूँ नानक राम चर्जी कला। हैव अ वंडरफुल एंड अ सेफ ड्राइव। तो अब इस गीत के साथ एंजॉय द सॉन्ग।

छोड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम न पाया पौड़ी छुड़ के फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया।

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कभू चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। जुड़ चुके जी एक बार फिर खूबसूरत सवेर चढ़दी कला वाली सवेर दे विच, शनिवार की चढ़दी कला वाली सवेर और खूबसूरत धुप दियां किरणां चढ़दी कला दियां प्रतीक, खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधू

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: तो संतोष जी, इतना बढ़िया कमर्शियल है जी, तो नजारे आ गया हुए, तो सारे जी पहुंचिए नजारा पे 30 रेमला ड्राइव पे और जल्दी से अपनी पार्टियां बुक कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 9054512600 पे कॉल करके आप अपना इवेंट बुक कीजिए, पार्टीज बुक कीजिए। आपको शाम को डिनर के लिए जाना है, लंच के लिए जाना है, तो इवेंट के लिए जाना है, कुछ भी हो प्री बुक करके जाइए और बढ़िया एम्बियंस का और टॉप खाने का एंजॉय लीजिए।
2: जी बिल्कुल,
1: एंजॉय कीजिए
2: बिल्कुल। सो साडे नाल दे नाल है गया तवा किचन दी टीम, तो साडे नाल है गया दीक्षा जी। दीक्षा जी तुसी ऑन एयर हो?
3: ਸਪੈਸ਼ਲ
2: ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿਚ?
3: ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਨਾ ਭਟੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ
2: ਜੀ,
3: ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਬਣਦਾ
2: ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਰੀਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਚੰਪੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਕੇਟਰਿੰਗਸ ਮੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ,
2: ਬਿਕੋਜ਼
1: ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਆਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਇਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਚੰਪੀ ਜੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੁਝੇ ਟੈਕਸਟ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ ਕੀ ਡੀਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਕੋ 1299 ਮੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਜ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲੇ 1299 ਵਾਲੇ ਆਪਕੀ ਡੀਲਸ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਜੀ 1299 ਮੇ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੋ ਪਲੇਟ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਜੀ 1299 ਮੇ, ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਨੂਡਲਸ, ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਵੜਾ ਪਾਓ, ਯੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ 1299 ਮੇ। ਔਰ ਇਨਕੇ ਕੁਲਚੇ ਜੀ ਇਤਨੇ ਬੜੀਆ ਹੈ, ਆਪ ਖਾਓਗੇ ਤੋ ਏਕ ਆਦਮੀ ਏਕ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਕੇ ਰਿਜ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ? हेलो,
3: हाँ
1: जी। और वीकेंड स्पेशल आप अगर ये सारी डीले लीजिए, और जो परांठे वाली आंटी है उनके जो स्पेशल परांठे है दारा सिंह परांठा, ये भी आपको 1299 में दो मिलेंगे जी। तो इतनी बढ़िया डील्स है, ये रेडियो के लिए स्पेशल डील्स है, जो भी रेडियो सुन के आएगा दीक्षा जी, तो आज उनको ये डील्स आप देंगे। सो जी, ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
2: जी। बिल्कुल,
1: हाँ जी।
2: सो 1299 दे दो दो डील्स है कॉम्बो आ। सो तुसी आज सारे जाने किचन कर लो बंद, ते रसोई पहुंचो, साडी रसोई केड़ी रसोई चे तवा किचन
1: थी।
2: एंड बहुत ही फ्रेश फूड हुंदा है इन्हां दा। सो असी हमेशा वीकेंड ते इत्थे जांदे, और तुहानू इन्हां दा फूड खा के लगेगा नहीं कि तुसी बाहरों कुछ खा के आए या तुहानू हैवीनेस हो रही है। सो डील्स भी बहुत वधिया है। सो सारे ने पहुंचना है तवा किचन।
1: तवा किचन आप पहुंचोगे जी 50 सनीवेल गेट पे, ये जी बोवियर्ड एंड एयरपोर्ट का इंटरसेक्शन है, या फिर माउंटेनिश एंड बोवियर्ड का इंटरसेक्शन है, वहां पे पहुंचिए। और उसका नंबर है जी 9057901699 पे आप उनको कॉल कीजिए और जल्दी से अपने ऑर्डर्स बुक कीजिए। और जो भी इनका टेस्टी खाना है, ये आई थिंक इनका स्लोगन है संतोष जी, प्रिपरेशन घर वर्गी और टेस्ट ढाबे वर्गा।
2: बिल्कुल। सो जे तुसी इंडिया दे टेस्ट नु मिस कर रहे हो, सो एक बारी तवा किचन जाओ। और इन्हां दे जेड़ी हैगी खन्ने वाली टिक्की,
1: हाँ जी हाँ जी,
2: बहुत ही स्वाद है। और इन्हां दी एक रबड़ी हुंदी है, जदों असी इंडिया च घूमन जांदे हुंदे सी ते रस्ते दे विच मैकलॉडगंज जांदे सी, रस्ते दे विच बॉम्बे पिकनिक स्पॉट आंदा सी, मेरा फेवरेट, उत्थे असीं रुक के रबड़ी वाली जेड़े फलूदा खांदे हुंदे सीगे, और रबड़ी वाली खीर भी हुंदी सीगी, और फलूदा सेम ओही टेस्ट तुहानू तवा किचन ते मिलेगा। इन्हां दे पहाड़गंज वाले छोले भटूरे, ओ माई गॉड, न्यूट्री कुलचा तुसी खा के देखे चौड़े बाजार वाला। तुसी इंडिया नू जे तुसी मिस कर रहे हो ना, एक बार तुसी तवा किचन जाओ, पैसे भी बचणगे और तुहानू क्वालिटी दा मजा भी आ जाएगा।
1: हाँ जी, जी।
2: बिल्कुल।
3: अज साडी अज एक स्पेशल डील लगी हुई है, जो है कि मैंगो शेक ते 699 दा ओनली मैंगो शेक तुहानू मिलूगा, ड्राई फ्रूट ते आइसक्रीम दे नाल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया डील है। आई थिंक दीक्षा जी, सॉरी मैं वो टेक्स्ट मैसेज मैंने अभी जस्ट देखा, लास्ट में एक डील लिखी थी ये भी चंपी जी ने, आई थिंक आप जो कैन वाला आप नहीं यूज करोगे राइट, जो कैन का मैंगो नहीं यूज करोगे, फ्रेश मैंगो से बनाया जाएगा
2: जी।
1: और जैसे आप ऑर्डर करोगे आपके एकदम फ्रेश बना के आपको फ्रेश मिलेगा, और उसके टॉपिंग्स आप आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स डाल के मिलेंगे राइट।
3: हाँ जी, आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट।
1: तो जी समर का इससे अच्छा आप क्या बोलते हैं कि एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं आएगा, आपको एकदम फ्रेश मिलेगा और ऑन द स्पॉट आपके लिए बनाया जाएगा। सो दीक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी द डील अगेन। तो 699 में आपको मैंगो मिल्क शेक मिलेगा विद आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट,
2: या और फ्रेश मैंगोज।
1: हाँ जी रिक्शा
3: फ्रेश मैंगो, और वो भी ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल पतला मिलेगा, पूरा जो हमारा इंडिया वाला टेस्ट जो गाढ़ा गाढ़ा मैंगो शेक होता है वही मिलेगा।
2: वाओ वेरी नाइस। सो सारे ने पहुंचना है जल्दी जल्दी तवा किचन, बट इन्हों थोड़ा जा टाइम दिया करो, इमीडिएटली उस टाइम जो तुम कोई फ्रेश चीज लैनी है तो तुम थोड़ा जा वेट करना पै सकता है, 20-25 मिनट की वेटिंग लैके चलो। सो तुम सारे पहुंचो तवा किचन 50 सनीवेल गेट, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੀਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੀਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ।
1: ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਕਾਲ ਕਰੇਂਗੇ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂਠੇ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਤੇ ਹੈ ਜੀ।
3: ओके
1: ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। और एक छोटा सा मैसेज हम देते हैं जी तवा किचन की तरफ से,
4: डिलीवर कर दें कस्टमर्स नो ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए होंदे ने।
5: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी, सच मनो स्वाद ही आ गया गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू, इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
6: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699
4: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
7: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸ ਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
6: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਊਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਵੇੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699।
1: तो जी कोई भी केटरिंग करवानी होती है टॉप का खाना मिलेगा आपको, प्रॉपर बना हुआ टेस्ट ढाबे वर्गा, प्रिपरेशन घर वर्गी, तो पहुंचे तवा किचन 905-790-1699। संतोष जी क्या हो गया, थोड़े आज थोड़े काम कुछ हंस रहे हो आप जी, क्या हुआ?
2: या मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत हास्य जी वाला एक क्वेश्चन है।
1: ओके जी।
2: सो मेनू किसी ने पूछा बट मेनू आंसर नहीं आ रहा, बट मैं वैसे ही हंसी जा रही हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: और मैं सोचा चलो कि असी अपने रेडियो फैमिली नु पूछ लिए कि जे कोई मेनू एदा आंसर दवे ते मैं अगे भेजा।
1: हाँ जी।
2: सो मेनू क्वेश्चन हैगा है मेरा,
1: तो संतोष जी के पिटारे से कुछ निकल रहा है। हाँ जी।
2: ओ क्वेश्चन हैगा या कि ओ केड़ा लैंड या जिथे सानू गाना गाना मना है,
1: गाना गाना मना है,
2: या वो कौन सी लैंड है जहाँ हमें गाना गाना मना है। सो तुसी भी सारे सुन रहे हो साडा शो, सो तुसी सानू कॉल करके दसो ते कित्थो केड़ी लैंड च तुसी गाना नहीं गा सकदे, कौन सा लैंड जिथे तुसी गाना नहीं गा सकदे। सो साडे कोई भी विनर्स जो भी आंसर्स देंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट टू कॉलर्स नो असी दे रहे हैं उन्हें तवा किचन वालों। सो की दिता जाए पंकज जी, असी तवा किचन नो दस दवांगे फिर
1: आज जी, जो भी आज जाएंगे
2: न्यूट्री कुल चाक दे दी।
1: हाँ, न्यूट्री कुल।
2: चलो जी, सो स्टार्टिंग टू जेडे भी साडे दो कॉलर्स होंगे रैंडम असी चकांगे उन्हां दे नाम। सो तुसी सारे ने तवा किचन च फिर पहुंचना है, असी तुहानू दसांगे नाम उन्हां दे। सो मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रही हां मैं, ओ केड़ा लैंड है जिथे तुसी गाना नहीं गा सकते, गाना गाना मना है।
1: गाना मना है।
2: या सो तुसी आंसर कित्थे देने है, तुसी साडे स्टूडियो दे नंबर ते कॉल करना है। सो साडे स्टूडियो दा नंबर हैगा 905-673-3337 905-673-3337 ते कॉल करके दसो केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है।
1: लेकिन संतोष जी ये ऐसे कैसे हो सकता है?
2: हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है।
1: तो क्रिएटिविटी सुनी जाए
2: जी, लेट्स सी कि सारियां दा आंसर की हुंदा है। सो तुसी सानू कॉल करनी है और दसना है सानू केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है।
1: ओके जी, तो आंसर्स क्रिएटिव होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए,
2: कुछ भी
1: और पहले दो कॉलर्स जो करेंगे उन कॉलर्स आएंगे या फिर राइट आंसर आएगा संतोष जी?
2: कुछ भी ये कोई कंपटीशन नहीं हैगा।
1: ओके जी,
2: तो बिल्कुल,
1: तो उनको मिलेगा जी तवा किचन की तरफ से लुधियाने वाला न्यूट्री कुलचा, बिल्कुल आज ये फ्री मिलेगा। तो जल्दी कॉल कीजिए जी, स्टूडियो के नंबर है 905-673-3337 पे आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या है वो चीज। संतोष जी चलिए जी, अपने पहले कॉलर।
2: हेलो प्रदीप जी, तुसी ऑन एयर हो?
8: हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग जी।
8: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ
2: ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ,
8: ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਹ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ।
8: ਥੈਂਕ ਯੂ,
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ 8777।
9: ਓਕੇ ਬੁਈ, ਬੋਨਜੋ ਸਾਬੀਆਂ।
2: ਹਾਂਜੀ
9: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ।
2: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
9: ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ।
1: ਚੰਦਰਮਾ ਕੇ ਉੱਤੇ?
2: ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ,
9: ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
9: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ।
2: ਓਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ,
9: ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
1: ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।

0: संतोष जी बहुत ही बढ़िया एवरग्रीन गाना है जी, जब भी सुनता हूँ हाँ नाचने का मन करता है
1: जी। आप आपने कभी सुना है पंकज जी, मतलब पंजाब जी हाँ, हाँ, बहुत फेवरेट सॉन्ग से
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: मेरा तो बहुत फेवरेट है। सो पता नहीं,
0: मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, जो भी मतलब मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आते हैं सारे, मतलब हिंदी मूवीज देख देख के सुनी आती है
1: जी बिल्कुल,
0: बिकॉज उसमें गाने आते हैं गाने पंजाबी गाने आते हैं, तो उसमें से काफी सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। चलिए जी संतोष जी, मैं आपके सवाल के बारे में सोच रहा था
1: जी,
0: सोच रहा था तो मैं मुझे आंसर देने का अलाउड है।

0: संतोष जी एक ये और एक गाना था एवरग्रीन गाना
1: जी,
0: लिखे जो खत तुझे, गाना अच्छा है बट म्यूजिक बहुत बढ़िया है।
1: बट आजकल मुझे लगता है खत वाला सिस्टम जो जो है ना वो हट गया, अब एसएमएस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस,
0: जमाना
1: हाँ, तो वो वाला सिस्टम हट गया, बट वो वाला टाइम बहुत अच्छा होता था।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: सो हुण पंकज जी गल करदे आं सी हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर, किसी तरह की भी गड्डी का कोई भी काम कराना, सेफ्टी करानी है, तुहानू कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। जे तुसी अचानक तो डिसाइड कर रहे तुसी किते जाना है तो फ्री डायग्नोसिस होएगा, फ्री एस्टीमेट मिलेगा। पहुंचना है तुसी हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर गैरी गरेवाल जी को, और रेडियो आवाज का नाम दस्यो, बट तुसी पहला इन्हां कोलों ले लियो एस्टीमेट कि किन्ना तुहाडी गड्डी का खर्चा आएगा। उस तो बाद तुसी दस्यो कि तुसी रेडियो आवाज वालों आए, तुहानू 10% ऑफ मिलेगा उहदे विच। सो सेफ्टी कराओ और पहुंचो तुसी हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर ते। ते एड्रेस हैगा इन्हां दा 38 ऑटोमैटिक रोड ब्रैम्पटन, ते फोन नंबर हैगा इन्हां दा 905-463-6363-905-663-63-63-63। पंकज जी तुसी फ्लोरिंग की कोई गल कर रहे सी?
0: हाँ जी, मैं फ्लोरिंग की बात कर रहा था जी। अगर आप किसी को फ्लोरिंग करवानी है, टाइल्स लगवाने हैं, तो आप फेथ फ्लोरिंग के पास जरूर पहुंचिए। सुखदेव गिल जी है, सुखदेव सिंह जी, सिंह गिल जी, ये प्रॉपर मतलब उनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है फ्लोरिंग सेगमेंट में ओनली। तो प्रोफेशनल आपको फ्लोरिंग करनी है तो आप फेथ फ्लोरिंग पे जरूर कॉल कीजिए। फ्लोरिंग, टाइलिंग, कोई भी लैमिनेट बिठाना है, जो भी टाइलें बिठानी है, पूरी फ्लोर घर की चेंज करवानी है, तो ये एक्सपर्ट है, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। इनका नंबर है 4372231094 4372231097 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो। ये लोकेटेड है जी 338 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट पे, सूट नंबर 213 ब्रैम्पटन। सुखदेव गिल जी फ्रॉम फेथ फ्लोरिंग, 4372231094 पे ले सकते हैं, हम उसको कर सकते हैं
1: जी, बिल्कुल। सो साडे कोल हुन डक्ट क्लीनिंग दा भी मौसम आ गया होया, एसी ऑन हो गए हुए सारे जाने, तुसी डक्ट क्लीनिंग करवाओ। तुसी कांटेक्ट करो नानक डक्ट क्लीनिंग, सारी तरह दियां क्लीनिंग्स करदे आ, ड्रायर क्लीन कराओ, डक्ट सैनिटाइजेशन करवाओ, फर्नेस क्लीन कराओ। ते फोन नंबर हैगा इन्हां दा
2: 7291522164 या मेंटली डिसेबल ने तो फेडरल गवर्नमेंट वालों एक ग्रांट मिल रही है। एंड इस अलावा अगर अगर तेरे को डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट हैगा एंड बच्चा 18 साल तो छोटा तो पेरेंट्स नो $284 तक हर महीने एक्स्ट्रा मिलने, जिन्हों की उम्र 18 तो अब है तो अप टू $200 उन्होंने एक्स्ट्रा जरा गवर्नमेंट वालों दिता जा रहा
0: है।
2: सो अगर तुहाडे भी परिवार दे विच कोई मेंबर ने फिजिकली या मेंटली डिसेबल ने तो तुसीं $90,000 की ग्रांट अप्लाई करना, तो कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 4169109000। वेबसाइट है punjabinsurance.ca।
0: थैंक यू सो मच।
1: सो तुसी इंडिया जाना है, किते वेकेशन प्लान कर रहे हो, कॉन्टैक्ट करना है तुसी कोमल ऑल लिंक ट्रैवल, नंबर हैगा इन्हां दा 905-239-7711-905-239-7711। ते तुसी बहुत वधिया वधिया डील्स लै सकदे हो कोमल जी कोलों। ते जे किसी ने भी अपना घर रेंट आउट करना हैगा या फिर तुसी घर सेल करना आ, तुसी तुहाडे कोल टीम चाहिए आ रेंट आउट करन दे वास्ते, ते तुसी सानू कॉल करनी आ फेयर डील रियल्टी ब्रोकरेज नू, टीम हरदीप पंधेर जी ग्रुप नू कॉल करनी आ। तुसी तुहाडी रेंट करन तो लैके सारी स्ट्रेस साडी होएगी, बहुत हार्ड एंड तुहाडी मनी हैगी। सो प्लीज़ तुसी इंजी किसी नू भी अपना घर रेंट आउट ना करो। सो साडी टीम दा नंबर हैगा 416-473-4242 4742। तवा किचन ते पहुंचना है, बहुत ही वधिया वधिया डील्स हैगियां, 1299 दियां दो दो डील्स तुसी ग्रैब करनी है तवा किचन ते पहुंच के, और इन्हां दा जिहड़ी प्रैपरेशन हैगी आ बिल्कुल घर वर्गी टेस्ट हैगा है, ढाबे वर्गा, और इंजॉय करना है। अज किचन ते काम ना करो, पहुंचो तुसी तवा किचन 50 सनीवेल गेट ते माउंटेन ऐश ते बवेड दी इंटरसैक्शन है। कोई पार्टी है, कोई हॉल बुक करना है, बजट नहीं हैगा ज्यादा, डोंट वरी, तुहानू नजारा वाली टीम नू अपना बजट दसो, तुहाडे बजट दे ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਈਵੈਂਟ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ. ਸੋ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 905-451-2600, 905-451-2600, 30 ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 1E. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ US ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6478314930, 6478314930. ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਜਾਓ. ਅੱਜ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ.
3: ਹੋਲਸੇਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
4: ਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ.
3: ਇਹ ਵੇਖੋ 13.6 ਕਿਲੋ ਸਨਸਪਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਟ ਫ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ $33.99.
4: ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ,
3: ਸਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ.
4: ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
3: ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ.
5: ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਈਟਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ wholesaleclub.ca ਵੇਖੋ.
6: Wholesale Club, whole lot of value.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, की हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। इस सुनहरे जे मौसम दे विच सुनहरी जी आवाज दे नाल, सुनहरे जे प्रोग्राम दे नाल स्वागत स्वागत स्वागत, वी वेलकम यू ऑल।

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने वो भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत विच बंदा की कुछ नहीं कर सकता है ना, जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़िया हुई ने वह दिन ब दिन जदों मजबूत होंदियां ने ते सानू भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी, सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड, उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है, काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जिहड़ियां इह होंदियां ने टाइम बीइंग वास्ते इह जिहड़ियां सेलां लगदियां ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जिहड़े ने बच सकते हैं, उसके नाल फ्री गिफ्ट्स जिहड़े ने ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी, जिवें सिद्धू साहब दस रहे थे कि तुसीं पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो, की पता पसंद आ जाता कुछ तो उसके नाल गिफ्ट जिहड़े ने वाह कमाल थोड़ा मिल सकते हैं जी। सो अपना लक जिहड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही हूँ जी मनु शर्मा होना का, कि थोनों पता है कि ओंटारियो के ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जिहड़े ने आ रहे हैं। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेज लई नवे फैसले न्यू डिसीजनस करने पास करने पै सकते हैं। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझते हो कि ये बदलाव जिहड़ा है ये चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली की सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो, सही कवरेज होना उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी

0: वैसे ये भंगड़ा बीट वाले गाने दा ना स्वाद अपना ही है जिन्ना मर्जी तुसी कोई होर गाना ला लो जदों एक ऐसे गाने वजदे ने तां मल्लो मल्ली यू नो थोड़ा जा खून जिहड़ा है थोड़ा जा डबल रफ्तार दे नाल चलना शुरू हो जांदा दौड़ना शुरू हो जांदा डू यू एग्री एग्री करदे हो मैनूं लगदा है ना सतनाम जी सत श्री अकाल स्वागत की हाल चाल हां जी हां जी हेलो आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी फिर दोबारा मिलायो ठीक है जी सतनाम जी की आवाज जी है मेरे तक तो पहुंची थी थोड़े तक पहुंची फिलहाल 905-564-444 प्रमोद जी फिर दोबारा कॉल कर लियो मेनू इंतजार रहेगा थोड़ी कॉल का गिल स्वीट फैक्ट्री प्योर वेजिटेरियन लाइव केटरिंग फॉर एनी ओकेजन मशीन मेड समोसे अवेलेबल ने हुण सो ऑल स्वीट्स जिहड़े ने कैनेडा दे विच जिन्ने भी थानू स्वीट्स दी थोड़ी जी यू नो क्रेविंग हो रही है वो थानू मिल सकते ने लाइव फूड ट्रक केटरिंग सारी ही ओकेशंस वास्ते 6 लोकेशंस तो थानू सर्व कर रहे ने 2 इन्हां दीआं लोकेशंस कैलगरी दे विच ने 5 चलो फ्रेशको दे विच ने सो इन्हां दे तुसी जदों चलो फ्रेशको दे विच शॉपिंग करदे करदे भुखा लग्गी आई तां फिर गिल्स स्वीट फैक्ट्री ते इक गेड़ा की लाणा उत्थों लंघोगे तुसी तुहाडे अपने आप ही दिल मल्लो मल्ली करेगा कि हुण समोसे भी पैक करा लिए हुण मना ए वी कर लिए हैड ऑफिस फोन नंबर नोट कर लो तुसी तां कि तुसी लाइव केटरिंग वास्ते ऑर्डर करना होवे तां नंबर थोड़े कोल होवे 905-799-2616 नंबर है जी गिल स्वीट फैक्ट्री वाले का 2131 विलियम्स पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन विखे लोकेशन है जी तो इस लोकेशन से जाके तुसी ऑर्डर कर सकते हो तो अपनी जी केटरिंग करानी है वो वधिया वधिया करवाई जा सकती है हेलो जी सत श्री अकाल 1695
1: चांदनी
0: रात चांदनी रात
1: अच्छा ये पता की पिछले साल सेंचुरी ऑफ द सॉन्ग सी पाकिस्तानी अपना फिल्म विच
0: खिड़दा जा रहा है देखिया कि ड्राइवेज क्लीन हो रहे ने सारे काम जिहड़े चेते आ रहे ने कि कोई भी काम कराना है तो मौसम जो अच्छा हो धुप्पां शुप्पां लग जाण वधिया तो फिर सिटी परमिट्स थानू यह ओमकार होम्स पॉल ग्रेवाल रेनोवेशन काम करके देंदे ने जी इनकलूडिंग द ड्रॉइंग्स गार्डन स्वीट्स बनवाने होन लीगल बेसमेंट बनानी होवे अपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ने है कंप्लीट कर चुके ने ओवर 20 गार्डन स्वीट्स इन 2025 बिल्ड करते ने कस्टम होम्स कोई भी तरह का कमर्शियल जॉब्स ऑफिस रेस्टोरेंट्स स्पेशल डिस्काउंट्स ने होम रेनोवेशंस ते इंक्लूडिंग $5,000 ते जे इफ यू बुक योर लीगल बेसमेंट या गार्डन स्वीट इन द मंथ ऑफ वैसे हुण पुछे हुण इन द मंथ ऑफ केड़े क्योंकि मई का लिखा हुआ है पर आई एम श्योर कि हुण भी कंटिन्यू कर रहे होंगे इस ऑफर के नाल 416-817-3600 नंबर तुसी फिर दोबारा नोट करो 416-817-3600 नंबर है जी ओंकार होम्स तो पॉल करवाल होरां दा जरूर कॉल करके इन्हां तो वधेरे जानकारी लेती जा सकती है अच्छा जी कैनेडा डे सेल कैनेडा डे बहुत अहमियत रखता है साढ़े वास्ते जिन्हें भी असी कनेडियंस हैं साढ़े वास्ते ब्रैम्पटन जिहड़ा है वो लैके आया जी कैनेडा डे की सैलीब्रेशन चिंगूजी पार्क दे विच सो सैलीब्रेट करो कैनेडा डे इन ब्रैम्पटन विद कंट्री स्टार ली ब्राइस कंट्री बैंड इमरसन ड्राइव चिंगूजी पार्क से लाइव कंट्री म्यूजिक होएगा फैमिली फ्रेंडली प्रोग्रामिंग होएगी चिंगूजी पार्क दे विच July 1st जिहड़ा इंजॉयमेंट की जा सकती है सिक्योरिटी मेजर्स मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यह उपराला कर रहे हैं जी ये थोड़े वास्ते ब्रैम्पटन एनुअल कैनेडा डे सैलीब्रेशन जी है चिंगूजी पार्क के वेनसडे July 1st हो जा रही है अपनी फैमिलीज में लेके आओ कम्यूनिटीज पहुंचन टूगैदर वील हैव फुल डे ऑफ लाइव एंटरटेनमेंट फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज फूड फायरवर्ड एवरीथिंग विल बी देयर लेकिन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है सो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी सेफ्टी तो सिक्योरिटी ਸੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੂਡ ਦੇ ਟਰੱਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ. ਇਟਸ ਐਨ ਆਫ ਫੋਰ ਦੈਮ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਚੰਗੋਜ਼ੀ ਪਾਰਕ 9050 ਬ੍ਰਮਲੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਜੁਲਾਈ 1 ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ. ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਲ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੇ. ਸੋ 6685 ਟੋਂਕਨ ਰੋਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਟੋਂਕਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ. ਸੋ ਬਿਗੈਸਟ ਸੇਲ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸੇਲ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਤ ਹੋਏ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਨੀਚਰ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਫਰੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਗਿਫਟਸ. ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਫਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਫਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ. ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. 6472620006472600 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸੇਲ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਿਲ ਸਕਣ. ਸੋ 6472620000 40 ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ.

0: चार बजे तक मेरा तो थोड़ा साथ खूबसूरत साथ बना रहेगा। खूबसूरत साथ नो और खूबसूरत बनाया जा सकता है, चार चंद लाया जा सकता है, इस महफिल नो ज्वाइन किया जा सकता है। 905-500-44 905-564-6444 इज द स्टूडियो नंबर। इस नंबर पे कॉल करना बिल्कुल ना भूले हो। वैसे तो कॉल कर रहे हो लेकिन वो तो असि लाइव ऑन लोकेशन पे, हमने थोड़ा जा इंतजार, फिर उस तो बाद बहुत सारिया गल्ला।
1: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Surya Dasko Sham Satoja Tak on dining and takeouts. Mazala Vos Sunday no Pratha plate. Monday, Manpasand Kulcha plate. Tuesday, Chana Patura. Wednesday, Lajwab Veg Thali. Thursday, Yummy Haka Thali. Friday, Mazala Vos Saag Makki Di Roti Da. A yummy deals is simply Indian. This Sariya Hi locations stay. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab.

तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मोहब्बत सी लगती है। पहले सही सोचा था, अब सोचने लगे हैं, पहले नहीं सोचा था अब सोचने लगे हैं, जिंदगी के हर लम्हों में तेरी जरूरत सी लगती है। और ये रातें क्या, दिन क्या, हर हर लम्हा, पल

0: अच्छा झूमर खेडी जा ते झूमर पाई जा, ये बहुत ही खूबसूरत पल जेडे अपने लाइफ पार्टनर दे नाल तुसी जी रहे हो। मॉर्गेज दी गल कीती असी, अपलायंसेस दी गल कर लेने। फर्स्ट टाइम होम बायर, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अपलायंसेस, एक ऐसी जगह तो जिथे रिलायबिलिटी इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, सब तो पहला रिलायबल कस्टमर सर्विस देना इन्हां दा मोटो है। किते भी थोनों किते ना किते कोई गुंजाइश हुंदी है कि हाँ ये अपलायंस मेरे घर दे लई ठीक रहेगा, मेरी नीड्स एंड वॉन्ट्स दे लई रहेगा ठीक, तो फिर गाइडेंस, अगेन गाइड बहुत अच्छा करेंगे। मनजीत सिंह दे नाल असी गलबात करन जा रहे हैं जी। अपलायंस जंक्शन तो साडे नाल जुड़ चुके हैं, इन्हां तो जानते हैं कि आज वीकेंड दी डील्स केड़ियां लेके आए ने साडे श्रोतियां वास्ते। जी ओवर टू यू मनजीत जी।
1: थैंक यू सो मच ग्लोरिया जी, तो प्रोग्राम सुनते सारे श्रोतों मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल जी। इस वीकेंड दी स्पेशल डील्स ने, सब तो पहला जेड़े भी फर्स्ट टाइम होम बायर ने जी, या फिर तुसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, पांच दे पांच अपलायंसेस दा प्रीमियम कॉम्बो है जिदे विच 36 इंच दा आइस एंड वाटर डिस्पेंसर आउंदा डोर वाला, फुल साइज फ्रिज है, ग्लास टॉप दा इलैक्ट्रिक स्टोव है, कन्वैक्शन ते एयर फ्री ओवन दे नाल, बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील दी डिशवाशर है विद फ्रंट लोड दा स्टेनलैस स्टील कलर दा, वाशर ते ड्रायर दा पेयर है, $3500 दी वैल्यू दे पांच प्रीमियम स्टेनलैस स्टील अपलायंसेस का कॉम्बो है जिहड़ा कि सिर्फ $3999 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जे तुसी अपना किचन रेनोवेट कर रहे हो, बिल्ट इन अपलायंसेस दे विच जे डील देख रहे हो तो अप टू 35% डिस्काउंट बिल्ट इन अपलायंसेस दे उपर अवेलेबल है जिहदे विच किचन एड, जेनियर, वर्लपूल, मेटैक, सैमसंग, एल जी, बॉश, इलैक्ट्रोलक्स ते जीई वर्गे ब्रांड्स अवेलेबल ने। जिहड़े भी कस्टमर इस टाइम लॉन्ड्री सैक्शन च डील देख रहे ने, फ्रंट लोअर का स्टेनलैस स्टील कलर का अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का सैमसंग ब्रांड का वाईफाई कनैक्टिविटी वाला वॉशर ते ड्रायर का पेयर है जिहड़ा कि $2200 की प्राइस तो घटा के $1499 च अज शाम 7 बजे तक अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। ते लास्ट दे विच साडे टीवी सैक्शन च 98 इंच 98 इंच का सैमसंग का LED स्मार्ट 4K टीवी $3500 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $1899 $1899 च इस वीकेंड तुसीं अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। 6 महीने पेमेंट करनी है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। नंबर टू कॉल है जी 905-450-0054-905-450-0054 अपलायंस जंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपलायंस जंक्शन से गेड़ा लाना बिल्कुल ना भूलो जी, इन्होंने दो लोकेशन अपनी खोलनिया ने थोनू सिर्फ सेवावां देने वास्ते। सो बने रहो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम के नाल, बड़ी ही छेती दिन वज जाने ने ते बस एक घंटा रह जाना थोड़े ते मेरे साथ दा, लेकिन उस तो पहला गीत संगीत चलना चाहिए, गल्लां बातां चलदियां रहनियां चाहीदियां ने क्योंकि साडा प्यार थोड़े नाल बहुत ज़्यादा है। सो इंजॉय द प्रोग्राम, 4 बजे तक थोड़ा ते मेरा खूबसूरत साथ बनया होया।
2: ਲੰਘ ਜਾਵੇਂ ਕੋਲ ਦੀ ਤੂੰ ਸੰਘ ਜਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤੱਕਣੀ ਚ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇਂ।

अच्छा ठीक है ओके मुड़ के पता नहीं कदों आना है। आए आए देखी बिल्कुल ऐदा ना बोलिया करो फिर मेरा दिल काउ माउ करता है जाना कितने जी इतनी है असं थोड़े नाल ही हैं तुम प्यार नाल थोड़ा जा आवाज लाओगे असं फिर दोबारा आ जाएंगे इस कोई गल वड्डी गल नहीं है। सो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम के नाल जुड़े हुए तुम 4 बजे तक थोड़ा तो मेरा साथ जोड़ा है वह बनया हुआ तो इस तरह इस साथ दे विच तुसी भी अपना साथ जोड़ा है निभाते रहो तो बस चार चंद लाते रहो 4 बजे तक मेरा साथ निभाते रहोगे ता ही फिर गल्लां बातें जड़ियां ने बनदियां रहनगियां गल्लां विचों गल्लां निकलदियां रहनगियां तो लाइव ऑन लोकेशन तो बड़ी छेती चलांगे लेकिन उस तो पहला मैं थोड़ा जा मूँह जा मिठा करा दा थोड़ा क्यों एवं बस दिल किता मेरा गिल स्वीट फैक्टरी प्योर वेजिटेरियन लाइव केटरिंग तुसी करवा सकते हो ऑन एनी ओकेजन कोई भी स्वीट्स कोई भी मिठाई मिठा मिठा गाना सुनते हुए थोड़ा दिल कर रहा है कि मैं ये मिठाई खाने का दिल कर रहा है वो खा सकते हो तुसी गिल स्वीट फैक्टरी ते लाइव फूड ट्रक केटरिंग भी की जाती है ऑन ऑल द ओकेजनस 6 लोकेशनस ने वैसे इन्हों दियाँ 2 कैलगरी के ने 5 चलो फ्रैश कोस्ट ने हैड ऑफिस का नंबर ले लो तो इन्हों तो सेवावान लो इन्हों समोसे जड़े ने वाह कमाल कमाल कमाल 9057992616 इज द नंबर 2131 विलियम्स पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन विखे इन्हों हैड ऑफिस है जी लोकेशन है इंजॉय करो जाओ तो इन्हों तो जी है वह केटरिंग कराओ हूँ गाँव सुना तो बंद है मैं आवा तो सतेंद्र सरताज होर ना लैके आवा खुमारियां प्यार दियां खुमारियां

0: कहते मोहब्बत कीमती चीज है, पर चाहत रखोगे तो मुफ्त मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त। चलो जी चलते हैं, लाइव ऑन लोकेशन से साड़ी टीम पहुंची हुई है, सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रैंड होम फर्नीचर लाइव ऑन लोकेशन कनाडा डे। ओ कनाडा, बिल्कुल जी कनाडा डे दी सेल सेल सेल, ओ भी कोई छोटी मोटी सेल नहीं, धमाकेदार सेल, टोल दे आवाज दे नाल जेड़ा सेल ते थोड़े नाल चले जाने हैं जी। लो जी सिद्धू साहब असी पहुंच चुके हैं हुण इस लिंक दे विच वी अपलायंसेस जानते हैं, क्योंकि आई एम एक्साइटेड, सारे एक्साइटेड ने कि केड़ा अपलायंस होएगा हुण फ्री ते केड़े आइटम्स जेड़े ने ओ सेल ते लगे हुए ने। ओवर टू यू सिद्धू साहब।
1: कैनेडा कैनेडा कैनेडा डे कैनेडा कैनेडा, मैं जाना चाहे समुद्र विच जावा चाहे आकाश विच जावा, ए गलबात हुंदी आ हांजी कैनेडा दी। खैर आनी वे प्राइसा दे रहे हैं अज लाइव लोकेशन कैनेडा डे की खुशी में पर पेश कर रहे हैं ग्रैंड फर्नीचर तो
2: हाइड्रोलिक बेडरूम सुइट चाहिए ने, डाइनिंग टेबल चाहिए ने, रियर मार्बल डाइनिंग टेबल चाहिए ने, कस्टमाइज सोफा सेट बनवाना चाहते हो चाहे पावर रिक्लाइनर सोफा सेट लेना चाहते हो, साल दिया सब

0: साहब एक लड़कियां है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, उसका पता मालूम नहीं, आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में।
1: देखो हाउ नेचुरल दिस, ही कैन ओनली डू इट, किन्ने नेचुरली। ये तो जिन्हों नहीं भी प्यार होएगा वो भी कह देगा कि हाँ है मेनू प्यार। व्हाट अ ब्यूटी।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। 7:02 हो गया जी। रेडियो अंदाज तुसी ट्यून कर चुके हो चलो एम 5:30 ते रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुशामदीद एंड स्वागतम।

दिल गुमसुम जुबां खामोश क्यों है, ये आंखें आज फिर नम क्यों है, जब तुझे कभी भी पाया ही नहीं है तो फिर आज खोने का गम क्यों है। माहौल गुमसुम हो तो इंसान भी उस माहौल में गुमसुम सा हो जाता है, मगर उस वक्त चाहने वालों को अगर किसी का इंतजार होता है तो बस किसी अपने का। अब आपकी नजर पुरसोज पुरनूर दिलकश आवाज जगजीत सिंह की।

प्यार करना सिखा दीजिए, मुझको मुझसे मिला दीजिए, दर्द दिल का जरा कम तो हो कोई ऐसी भी दवा दीजिए, रह के खामोश मेरे ऐ सनम यूं ना सजा दीजिए, मेरी तिश्नगी को मोहब्बत का समंदर बना दीजिए। समीन रंगों की इस महफिल में कुछ रंग बेरंग भी हो जाते हैं, तो आइए कुछ ऐसे ही अंदाज में गाई हुई एक खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे अपने दिलकश आवाज के साथ नवाजा है लता मंगेशकर।